0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल।

0: that will be given to them.
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh held the third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
1: तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस केस इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा इस बात को हम लोगों ने माना है कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम

सुप्रभात 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं, मैं देवजानी। और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर इस नई सुबह का स्वागत करेंगे। हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और नए अवसर लेकर आती है। तो आइए मुस्कुराइए, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। इस सुहानी सुबह में सुनेंगे मनपसंद सदाबहार गीत, काम की बातें और ताजा

सुन रहे हैं आप एफएम गोल्ड पर सुहानी सुबह। मैं दीप जानी आप सभी सुनने वालों के साथ। आइए आप जानते हैं कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों के लिए अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। कोलकाता का स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, जी हां, आमतौर पर आसमान में आज बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 96%। आज सुबह 6:30 बजे तक बीते 24 घंटों में 9.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी, 26 जुलाई से 27 जुलाई तक पश्चिम बंगाल तट और उत्तर बंगाल की खाड़ी के आसपास 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा झोंकों के साथ हवा की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए इस अवधि के दौरान मछुआरों को पश्चिम बंगाल तट और उत्तर बंगाल की खाड़ी में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो ये था मौसम का ताजा हाल। आगे बने रहिए एफएम गोल्ड और सुहानी सुबह के साथ।

समय की धारा कभी नहीं रुकती, लेकिन इतिहास अपने पन्नों में उस या उन अनमोल पलों को हमेशा के लिए सहेज लेता है जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी। तो चलिए अब पलटते हैं इतिहास के कुछ सुनहरे पन्ने और जानते हैं कि आज के दिन यानी 26 जुलाई को देश और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी।

1609 यानी 1609 में अंग्रेज गणितज्ञ थॉमस हैरियट दूरबीन से चंद्रमा का नक्शा बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। 1865 में आज के ही दिन न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड से वेलिंगटन स्थानांतरित हो गई। 1945 में भौतिक विज्ञानी रेमर श्रेबर ने और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पी पीर डी सल्वा फैट मैन बॉम्ब यानी नागासाकी पर बमबारी का जो हादसा हुआ था उसके लिए प्लूटोनियम कोर को टिनियन द्वीप तक ले जाने के लिए किटलैंड आर्मी एयरफील्ड से ये लोग रवाना हुए थे जहां बम को असेंबल किया गया था। 1965 में मालदीव्स गणराज्य को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसलिए आज मालदीव्स मनाता है अपना राष्ट्रीय दिवस। 1969 में 39 ईयर्स शिरोन साइट्स एडम्स प्रशांत महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला बनी। 1971 में अपोलो 15 का प्रक्षेपण स्कॉट और इरविन द्वारा चंद्रमा पर चौथे मानव युक्त लैंडिंग के लिए किया गया। 1982 में भारतीय फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन फिल्म कुली के एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे आज के ही दिन। 1999 में कश्मीर के कारगिल युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 महीने तक चले संघर्ष के बाद लड़ाई समाप्त हुई। आज जयंती है आयरिश नाटककार साहित्य के लिए जिन्हें 1925 का नोबेल पुरस्कार हासिल हुआ था, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का। 1856 में जिनका जन्म डबलिन आयरलैंड में हुआ था। स्विस मनोचिकित्सक जिनका जन्म स्विट्जरलैंड के कैसविल में हुआ था। जी हां, हम बातें कर रहे हैं कार्ल जंग की। 1875 में इनका जन्म हुआ था। 1894 में अंग्रेजी लेखक अल्डस हक्सले का जन्म हुआ था। आज के ही दिन 1928 में अमेरिकी निर्देशक स्टैनली कुब्रिक पैदा हुए थे। आज के ही दिन न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉन्क्स में जिन्हें जाना जाता है 2001 अ स्पेस ओडिसी, डॉक्टर स्ट्रेंज लोव, स्पार्टकस जैसी फिल्मों के लिए। आज अपना जन्मदिन मनाते हैं मशहूर रॉक गायक गीतकार मिक जैगर जिनका जन्म 1943 में हुआ था। आज अपना जन्मदिन मना रही हैं लंदन इंग्लैंड में जन्मी अंग्रेजी अभिनेत्री हेलेन मिरन भी जिनका जन्म 1945 में हुआ था इंग्लैंड में। में साउथ ऑरेंज न्यू जर्सी में जन्मे अमेरिकी अभिनेता केविन स्पेसी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1964 में आज के ही दिन वॉशिंगटन डीसी में पैदा हुई थी अभिनेत्री सैंड्रा बुलॉक जिन्हें जाना जाता है स्पीड, द ब्लाइंड साइड जैसी फिल्मों के लिए। आज के ही दिन 1967 में पैदा हुए थे डर्बीशायर ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के डर्बीशायर में अभिनेता जेसन स्टैथम जिन्हें जाना

जाता है द ट्रांसपोर्टर क्रैंक जैसी फिल्मों के लिए। और आज अपना जन्मदिन मना रही है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री रह चुकी जेसिंडा अर्डन, जिनका जन्म 1980 में हैमिल्टन न्यूजीलैंड में हुआ था। और साथ ही साथ आप में से जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उन सबको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू।

100.5 FM गोल्ड खरा सोना पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह दीपशानी के साथ। 7:47 और 16 सेकंड समय हो रहा है। आइए अब नजर दौड़ाते हैं अखबारों पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी इस्तीफा। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर किए हमले, 14 लोगों की मौत। रूस के आंशिक कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या क्षेत्र में स्थित पर्यटन स्थलों पर यूक्रेनी सुरक्षा बलों के हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन के

पूर्वोत्तर सूमी क्षेत्र में रूस के ड्रोन हमले में 3 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। H-1B वीजा पर शुल्क लगाने की ट्रंप की प्रशासन की मांग ठुकराई। अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ दिए गए उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है, जिसमें अधीनस्थ अदालत ने उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा पर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाने का निर्णय को शुल्क लगाने के निर्णय को रद्द कर दिया गया था। स्पेस एक्स के स्टारशिप ने स्टारलिंग उपग्रहों के साथ परीक्षण उड़ान भरी। स्पेस एक्स के विशाल स्टारशिप रॉकेट ने शुक्रवार को एक और परीक्षण उड़ान भरी और इस दौरान स्टारलिंग के सबसे उन्नत 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। धरती पर प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों की संख्या तेजी से घट रही। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के एक समूह के साथ जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक पीटर मरा और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिक नेथन डब्ल्यू कूपर ने हाल में ही पृथ्वी की 3,380 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों की स्थिति, खतरों और संरक्षण के प्रयासों का एक व्यापक आकलन प्रकाशित किया है। इसके परिणाम चिंताजनक हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि दुनिया भर की आधी से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों की संख्या घट रही है, जिसके पीछे कई तरह के खतरे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल विभिन्न महाद्वीपों, महासागरों और पारिस्थितिकी तंत्र को अरबों प्रवासी पक्षी आपस में जोड़ते हैं, जब वे अपने भोजन की तलाश वाले प्रवास क्षेत्रों और अपने प्रजनन स्थलों के बीच लंबी और रोमांचक यात्राएं करते हैं।

और अब खेल की खबरों की ओर नजर दौड़ाते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 भारत ने लॉन बॉल स्पर्धा के टाई ब्रेकर में टोंगा को हराया। रूपा रानी टिर्की व पिंकी सिंह की जोड़ी सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार। राष्ट्रमंडल खेल पदक तालिका में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेल्स और भारत। भारतीय तैराक फाइनल में पहुंचने में विफल रहे। भारत के व्हील बेयर महिला बास्केटबॉल में वेल्स से मिली हार। उधर क्रिकेट में भारत ने जिम्बाब्वे से 2-0 से श्रृंखला जीती। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने खेली अर्धशतकीय पारी। गेंदबाजों का रहा शानदार प्रदर्शन। मोहन बागान ने शुरुआती मैच में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया डूरन कप में। हॉकी में भारत वेल्स, इंग्लैंड वो पाकिस्तान के साथ पूल में ही विश्व कप में इतिहास रचने को तैयार है भारत, कोच ने कहा। आखिरी बार 1975 में खिताब जीता था।

तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे साथ बिताया ये समय आपके दिन की शुरुआत को और भी खुशनुमा बना गया होगा। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हर दिन नए दिन का स्वागत पूरे उत्साह के साथ कीजिए। और अब मुझे यानी देवजानी को दीजिए अनुमति, इजाजत, पर दोबारा आपसे जरूर मुलाकात होगी बहुत जल्द। इसी उम्मीद के साथ सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
4: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
4: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
6: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
4: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
7: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
4: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
9: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका

0: जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
2: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJP

0: सभी तीन मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी सीजेपी ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड। कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Divas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship. Women's team bagged silver medal. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
3: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
2: On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson Saurav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
4: The Kokrul Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
5: So hum immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw kare peacefully apne ghar wapas

0: के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। इस बीच दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। समूचा राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है। करगिल विजय दिवस के अवसर पर हम विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से खास बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश की हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने दिल्ली में दिन के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Unit Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held the third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
2: जो organizers हैं और protesters हैं, उनका इस activity के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। Concession according to the rules and regulations, whatever maximum will be possible, that will be given to them.
1: On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson Saurav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
3: The Congress Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
4: To hum immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw kare, peacefully apne ghar wapas jaye.
1: Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Talking to media after the announcement, Mr. Joshi said that he will try his level best to meet the expectations from him.
5: Thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department with full strength. I will try to work with all humility and honesty.
1: President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effect. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री प्रह्लाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। इस बीच दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट,

0: Ministry called for diplomacy and dialogue to resolve the Yemen conflict, urging all sides to avoid further military confrontation in remarks published by Iran's state-run newspaper. IMD has issued a red color warning for extremely heavy rainfall over Madhya Maharashtra and Odisha today. IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over Chhattisgarh, Gujarat, Konkan and Goa till tomorrow. In Delhi, prediction is of cloudy sky with a spell of very light to light rainfall during the day. And in squash, top seed Anahat Singh has scripted history by becoming the first Indian to clinch the World Junior Championships. Anahat defeated Egypt's Ruqayyah Saleem 3-0 in the girls' singles final of the World Junior Championships at Niagara on the Lake, Canada. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishv Darpan ke saath main Farhat Naz. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का महंगाई और नागरिक अधिकारों पर पाबंदियों के विरोध में आज से दो दिन के प्रदर्शन का ऐलान। लगभग दो हफ्ते तक लगातार बमबारी के बाद अमरीका ने ईरान पर हवाई हमले रोके। हुदेदा पर सऊदी अरब के हवाई हमलों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की तीन दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा रही। यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
2: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने आज से दो दिन के आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन का समापन मुजफ्फराबाद में एक लंबी पदयात्रा के साथ होगा। अधिकार कार्यकर्ता उमर नजीर कश्मीरी और अधिवक्ता ख्वाजा मेहरान ने दादियाल में पूर्ण बंद का आह्वान किया है और मीरपुर संभाग के लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मीरपुर से निकलने वाले विरोध काफिले कल जोहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने से पहले रावल कोर्ट में धरने में शामिल होंगे। पाकिस्तानी मामलों के जानकार ओम प्रकाश दास ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कहा कि यह आंदोलन बढ़ती महंगाई, बिजली की ऊंची दरों और नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंधों को लेकर जनता के बढ़ते गुस्से के बीच हो रहा है।
3: ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में रैली शुरू कर रहा है मुजफ्फराबाद की तरफ रावला कोर्ट से, ये लॉन्ग मार्च जुलाई 15 को शेड्यूल था। पाकिस्तान बोला कि बात करेंगे लेकिन बात किया नहीं। अब जैक ने ये डिसाइड किया है कि नहीं, अब हम पाकिस्तान की नहीं सुनेंगे, ये भरोसे के लायक नहीं है। प्रोटेस्ट लीडर जो है वो अपने लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अमन, शांति और डिसिप्लिन बनाए रखें। रैली के दौरान पाकिस्तान फोर्स यूज कर रहा है, खाना पानी बिजली सब कुछ बंद कर रखा है रैली को।
1: अमेरिका ने ईरान पर लगभग दो सप्ताह तक बमबारी के बाद हवाई हमले रोक दिए हैं। संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने बताया कि रात भर कोई महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि नहीं हुई। इस घटनाक्रम से तनाव कम होने की उम्मीद है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन करमानपुर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सैन्य कार्रवाई में विराम की पुष्टि की। हालांकि ईरान के पड़ोसी खाड़ी देशों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं वहीं बनी हुई हैं। सऊदी अरब अधिकारियों ने लाल सागर में महत्वपूर्ण तेल अवसंरचना केंद्र वाले यानबू और जिजान प्रांत में चेतावनी सायरन बजाए।

0: बहरीन में भी एहतियात के तौर पर मिसाइल चेतावनी अलार्म बजाए गए। स्थानीय अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने रणनीतिक लाल सागर बंदरगाह शहर हुदेदा पर सऊदी अरब के हवाई हमले के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इससे प्रमुख नौवहन मार्गों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहया सारी ने कहा कि हमले में लाल सागर के यानबो और जिजान शहरों में आरामको सुविधाओं को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने पुष्टि की कि कल तड़के दोनों शहरों में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। ताजा घटनाक्रम हूती समूह की उस धमकी के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से होकर सऊदी संबद्ध जल मार्ग को अवरुद्ध करने की चेतावनी दी। उन्होंने रियाद पर यमन पर नाकाबंदी लागू करने और हाल के हमलों का आरोप लगाया जिनमें सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ हमला भी शामिल है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री संकीर्ण मार्ग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और जिसके माध्यम से वैश्विक व्यापार का लगभग 12% गुजरता है। इससे पहले हूती समूह ने लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाया था। जवाबी कार्रवाई में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसने हुदैदा पर हवाई हमले किए, बंदरगाह और दूरसंचार निगम को निशाना बनाया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने ईरान के सरकारी अखबार द्वारा प्रकाशित टिप्पणियों में सभी पक्षों से आगे के सैन्य टकराव से बचने का आग्रह करते हुए यमन संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीति और बातचीत का आह्वान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जर्मनी के बर्लिन में वार्षिक LGBTQ प्राइड समारोह में एक वैन के चढ़ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के कारण पुलिस को समारोह रद्द करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बर्लिन पुलिस ने एक संदिग्ध की पहचान की है, उसके इस्लामिक गुटों से संबंध बताए जा रहे हैं। क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे के नाम से प्रसिद्ध शहर की प्राइड परेड यूरोप के सबसे बड़े LGBTQ समारोह में से एक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर ईरान को अमरीकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों की सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए उपग्रह खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि रूस अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगभग 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर रूस के उपग्रह निगरानी गतिविधि का पता लगाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एकत्र जानकारी ईरान के साथ साझा की जा रही है। ये आरोप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन और रूस के ईरान को हथियार आपूर्ति करने के खिलाफ चेतावनी देने के बाद आए हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए प्रविष्टियां आधिकारिक तौर पर खोल दी हैं। एशिया का सबसे पुराने फिल्म महोत्सव इफ्फी में प्रमुख इंडियन पैनोरमा सेक्शन होगा जिसमें 25 फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म होंगी और उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: सबसे पहले बात स्क्वैश की। भारत के युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई है। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स पर है जहां स्क्वैश को पहली बार ओलंपिक्स खेलों में शामिल किया जाएगा। पुरुष वर्ग में एशियाई जूनियर चैंपियन आर्यवीर देवान भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर हॉकी में भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। और अब बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। हालांकि भारत 2 मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। कल खेले गए दूसरे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर ही सिमट गई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोलदो

वह नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का महंगाई और नागरिक अधिकारों पर पाबंदियों के विरोध में आज से दो दिन के प्रदर्शन का ऐलान। लगभग दो हफ्ते तक लगातार बमबारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले रोके। हुदेदा पर सऊदी अरब के हवाई हमलों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: We bring you a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
1: Community, एक community जब कोई problem से जूझते हैं, ये हो सके कि एक खराब air quality हो, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो court नहीं जा पाता है. Court final stage पे आता है, and court इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि court पे एक चीज मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, that is justice. अब environment दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पे प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं. अब एक कोई गाँव के एक कम्युनिटी उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं. एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपरमार्केट. तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है. हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है. पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते. हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूंगा. एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक CRZ नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे. ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे CRZ एक केस कैसे NGT का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसा बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है. तो पहले हम शुरू करते हैं EIA नोटिफिकेशन के बारे में. EIA नोटिफिकेशन पे जो है It's based on an international law principle and as well as is widely discussed in our court, जो हमारा court पे भी discuss किया गया है, that is a precautionary principle. So there is a proverb called precaution is like, you know, it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such cutting such, that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment, that need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is the this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
0: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation

0: participation and legal remedies.
1: Now, as a group of organized a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that and give the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है and उसके basis पे एक proper participation के द्वारा grassroots का जो community जो impacted community है project affected community है उनका proper participation के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसके क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया हो। उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पे बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारा उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमिडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ सब एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैंग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैंग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ग्राउंड वेयर द पब्लिक इज एक्चुअली स्टेइंग सर्टेनली rules and regulations are made in the top tier but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi so that's how we can achieve truth environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach it should be there.
0: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एनआईसी के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल विंडो, सिंगल विंडो दिया गया है फॉर एड्रेसिंग द एप्लीकेशंस, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है। इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दी। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रिस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प

और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी
भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं।

साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट

गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को 1 चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल
हमें

बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है
कि मन की बात

में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों,

अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में

0: करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political

0: for accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said, every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said, every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है. केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता. यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते. इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है. वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए. मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है. यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है.
0: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
1: बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being vocal for local.
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
1: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
0: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said, Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Divas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who had laid down their lives in the defense of the motherland. In a social media post, President Murmu said, "The unparalleled valor, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces." In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Divas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at the cenotaph and paid tributes to the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation Vijay. Addressing the gathering, Mr. Rajnath Singh said, "The Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valor of Indian soldiers." More from our correspondent.
2: Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Divas commemoration at the Kargil War Memorial in Dras by paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. Addressing the gathering, he said that the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment that showcased the courage and valor of Indian soldiers before the world. He said their bravery continues to be a matter of pride for every Indian. The Raksha Mantri also honored Vietnam and the next of kin of Kargil martyrs and flag it in the Shaurya Vijay Yatra. For Akashwani News, this is Anad Ali from Kargil War Memorial, Dras.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Pralhad Joshi has taken over as the new education minister for

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के

0: वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को

0: कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट

0: किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ा।

0: रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
0: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर है +7 9652773414 और यूक्रेन में संपर्क नंबर है +38 09335 9958। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे भवन में प्रवेश करते समय केवल राजस्व संग्रह के बारे में नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा के बारे में भी सोचें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी उनके काम का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today."
0: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: Mr. Modi said, India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
0: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS Mahendragiri शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों श्रद्धा

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652773414 है और यूक्रेन में +38093355998 है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे भवन में प्रवेश करते समय केवल राजस्व संग्रह के बारे में नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा के बारे में भी सोचें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी उनके काम का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल और मुंबई के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आलोक कुमार भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी को की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख पहलों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला बारिश का पानी इकट्ठा करो अभियान और जल रक्षा मिशन के तहत वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है। 662 गांवों में 60,000 से अधिक जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require calendar to be remembered as Kargil Vijay Diwas has been celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: In his Man Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन

0: উফাত বিজলি যোজনা যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsuryaghar.gov.in এ।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: Thank you. Thank you very much. Quite a thrill for us veterans tonight to be up here playing together again. I want to thank all you guys. It's nice to be back playing with you guys. It's a lot of fun. And we hope you all have had a good time. Thanks for helping us get through this verse, and it's all downhill from here.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामलों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है
2: आज कारगिल विजय दिवस है ये दिन हमें गर्व से भर देता है ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां कठिन मौसम दुश्मन की चुनौती हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है
2: रक्षा उत्पादन हो रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं
3: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत
1: राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र

0: साधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो का भार उठा करके ये पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का दूसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today."
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. He gave an example of waste to wealth from Sitamarhi in Bihar, where waste is being recycled to create attractive benches.
2: बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: Prime Minister Narendra Modi is interacting with the participants of Viksit Vibrant Village Program 2026 through video conferencing. Over 400 youth participants representing every state and union territory are sharing their experiences with the Prime Minister. The Viksit Vibrant Village Program provides participants with first-hand exposure to the socio-economic landscape, cultural heritage and developmental aspirations of India's frontier regions while fostering community participation, national integration and a deeper understanding of the strategic importance of border villages. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Soon after taking charge, he chaired a review meeting of the Education Ministry to assess the implementation of various schemes and key initiatives. Later, speaking to media, Mr. Joshi said he is currently holding review meetings to gain a comprehensive understanding of the Ministry's functioning, policy and ongoing initiatives. The Ministry of Jal Shakti has said that Rajnandgaon district in Chhattisgarh has emerged as a national front runner in water conservation through scientific planning and community participation under the Catch and Rain campaign and Mission Jal Raksha. More than 60,000 water conservation and recharge structures have been created across 662 villages. Over 500 defunct borewells have been converted into recharge shafts. More than 600 injection wells have been linked with over 1,700 mini percolation tanks. And over 2,500 water bodies have been geotagged. At the ongoing Commonwealth Games, India's Rishikant Singh Chanambam won the silver medal in the men's 60kg weightlifting event in Glasgow today. Rishikant lifted 121kg in the snatch, setting a new Commonwealth Games record before Malaysia's Muhammad Ani Kasdan equaled the mark. The silver medal is India's second medal at this year's Commonwealth Games and the first in an able-bodied event. In men's cricket, India were 86 for 1 in 8.3 overs against Zimbabwe in the third and the final T20 International in Harare when reports last came in. Earlier, the visitors won the toss and elected to bat. Earlier today, India reclaimed number one spot in the ICC men's T20 ranking after taking an unassailable 2-0 lead against Zimbabwe. And with that, we end this news bulletin.
3: আকাশবাণী কলকাতা খবর পড়ছে প্রিয়া বিশ্বকর্মা। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার ভারতকে আরও বেশি আত্মনির্ভর করে তুলেছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন। আকাশবাণীর 136তম মন কি বাতে আজ কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশের বীর যোদ্ধাদের অসীম সাহসের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, দেশমাতৃকাকে রক্ষার সংকল্পে বীর যোদ্ধারা তাঁদের সবকিছু উৎসর্গ করেছেন, দেশ তাঁদের বীরত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
3: রাজনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং গবেষণায় ভারত তার বন্ধু দেশগুলির সহযোগিতায় এক নতুন দিগন্তে পৌঁছেছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি জানান, প্রতিবেশী দেশ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্রহ্মোস এবং অস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, 4 জুলাই থেকে দেশজুড়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণে এক বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। বৃষ্টির জল সঞ্চয় দেশের জল সংরক্ষণে এবং বৃক্ষরোপণে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে। মজে যাওয়া পুকুর সংস্কার করে এখন গ্রাম ও শহরের মানুষ নতুন উদ্যোগে কাজ করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলায় 1,500 পুকুর খননের কথা উল্লেখ করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পুকুরগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার অভিযান যথেষ্ট ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে তিনি জানান।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही, मुझे बहुत खुशी है।
3: প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এক পেড় মাকে নাম অভিযানে দেশজুড়ে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। আমেদাবাদের ভারু এলাকায় 1 ঘন্টার মধ্যে 25,000-এরও বেশি মানুষ 3,500-এরও বেশি গাছ রোপণ করেছে। এই প্রচেষ্টা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার মন কি বাতে বলেন, প্লাস্টিক দূষণ গোটা বিশ্বের পরিবেশের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্লাস্টিক আবর্জনার সঠিক ব্যবহারের ওপর জোর দেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি রিসাইকেল করা প্লাস্টিকের বেঞ্চের কথা উল্লেখ করেন। আর কিছুদিনের মধ্যেই দেশ স্বাধীনতার মহোৎসবে যোগ দেবে। তেরঙ্গায় রয়েছে দেশের সংবিধানের আদর্শ। এবছরও হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান বাস্তবায়িত করতে সার্বিক প্রয়াস চালানো হবে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে দেশবাসীর কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। তিনি মাইগভ পোর্টালের মাধ্যমে দেশবাসীর মতামত আহ্বান করেছেন। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী 9-17 আগস্ট রাজ্যজুড়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির আয়োজন করছে। এর আওতায় জেলা থেকে ব্লক

गुड इवनिंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है दोस्तों 100.1 FM गोल्ड हर सुना पर। आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आरजे अंकित और आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। शाम की चाय का अपना ही आनंद होता है। दिन भर की व्यस्तता के बाद जब मन थोड़ा सुकून चाहता है तब एक प्याली चाय और सदाबहार गीतों की महफिल हर थकान को दूर कर देती है। यही तो है हमारी इस महफिल की खासियत। हर गीत एक याद, हर धुन एक एहसास और हर मुलाकात दिल से। तो आइए चाय की पहली चुस्की के साथ शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर।

फिल्म कश्मीर की कली से दोस्तों मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, उपेन अय्यर का संगीत, एसएच बिहारी के बोल। दोस्तों अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर रहेगा गानों का सिलसिला जारी, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 100.1 FM गोल्ड, खरा सुना प्यार जी अंकित के साथ।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौसम चाहे कोई भी हो, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर बार दिल को ताजगी से भर देते हैं। दीवाना हुआ बादल भी एक ऐसा ही नगमा है जिसे सुनते ही कश्मीर की वादियां, पहाड़ और प्यार की मासूमियत आंखों के सामने उतर आती है। कहते हैं अच्छी शाम की शुरुआत अगर अच्छे संगीत से हो जाए तो पूरा दिन यादगार बन जाता है। अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

फिल्म दो रास्ते से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल। दोस्तों, शाम की चाय सिर्फ स्वाद नहीं देती बल्कि बातचीत का एक खूबसूरत बहाना भी बन जाती है। घर में परिवार के साथ, दोस्तों के बीच या अकेले रेडियो सुनते हुए चाय हर पल को थोड़ा और अपना बना देती है, और जब उसके साथ ऐसे सदाबहार गीत हो तो शाम अपने आप यादगार बन जाती है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे आज भी लोग पूरे दिल से गुनगुनाते हैं।

चिराग से मोहम्मद रफी लेकर आए थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत, मदन मोहन का संगीत मजरूह के बोल। पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनमें शोर नहीं सुकून है, उनके बोल सीधे दिल से निकलते हैं और धुनें इतनी मधुर होती है कि बरसों बाद भी उनका असर कम नहीं होता। शायद यही वजह है कि आज भी नई पीढ़ी इन गीतों को उतना ही पसंद करती है जितना पहले की पीढ़ियां। अब पेश है एक और प्यारा सा बेहतरीन गीत और अमर गीत आप लोगों के लिए।

फिल्म गुमराह से दोस्तों महेंद्र कपूर लेकर आए थे ये गीत, रवि का संगीत और शहीर के बोल। दोस्तों क्या आप जानते हैं 1960 और 70 के दशक में कई गीतों की रिकॉर्डिंग एक ही टेक में पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ की जाती थी। गायक, संगीतकार और दर्जनों वादक एक साथ रिकॉर्डिंग करते थे, इसलिए उन गीतों में जो स्वाभाविकता सुनाई देती है वो आज भी बेमिसाल मानी जाती है। और अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें सफर भी है, उम्मीद भी और जिंदगी की मिठास भी।

0: फिल्म परिचय से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। म्यूजिक डायरेक्शन था आर डी बर्मन का और लिरिसिस्ट थे गुलजार।
1: हंड्रेड पॉइंट वन एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: पीएम श्री योजना, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के 14,500 से अधिक मौजूदा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करेंगे। अगर इसकी मुख्य विशेषताएं की बात करें तो दोस्तों आधुनिक बुनियादी ढांचा है, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब और खेलकूद के लिए बेहतर सुविधाएं, हरित पहल यानी ग्रीन स्कूल्स, स्कूलों में सौर ऊर्जा पैनल, LED लाइट्स, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, समग्र विकास, बच्चों को पठन पाठन शैली को रटने की बजाय अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंशियल और कौशल आधारित बनाना। इस योजना की अवधि और वित्त पोषण की बात करते हैं दोस्तों। अगर इसकी अवधि की बात करें तो योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से 26-27 तक 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। फंडिंग पैटर्न सामान्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 है। पूर्वोत्तर हिमालय राज्य व जम्मू कश्मीर के लिए यह 90:10 तथा बिना विधायक वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषित है।
1: हंड्रेड पॉइंट वन एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

उम्मीद है दोस्तों आपकी शाम चाय की खुशबू और पुराने गीतों के साथ और भी सुरीली बन गई होगी। पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देते बल्कि हमारी जिंदगी के कई सुनहरे पलों से दोबारा मिला देते हैं। तो आइए संगीत के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं।

फिल्म प्यार ही प्यार से दोस्तों आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत शंकर जयकिशन का संगीत हसरत जयपुरी के बोल। दोस्तों हिंदी फिल्म संगीत की खूबसूरती सिर्फ उसकी धुनों में नहीं बल्कि उसके शब्दों में भी है। कई गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत कविता हमारे सामने जीवंत हो गई हो। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसने प्रेम को बेहद सादगी और गहराई से पेश किया।

फिल्म जॉनी मेरे नाम से किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदिवर के बोल। दोस्तों, चाय की हर प्याली अपने साथ एक कहानी लेकर आती है, कहीं दोस्तों की हंसी, कहीं परिवार के साथ, तो कहीं अकेले में रेडियो की आवाज, और यही छोटे छोटे पल जिंदगी को खास बना देते हैं। अगर इस वक्त आपके हाथ में भी चाय का कप है तो हमारी तरफ से एक मुस्कान स्वीकार कीजिए। अब पेश है एक और सदाबहार नगमा, और दोस्तों इस गाने को सुनते सुनते मैं आपको लिए चलूंगा दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ फिर लौटूंगा 6:20 पर कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स लेकर। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर, क्योंकि मैं कर रहा हूं आपके लिए यहां इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्ष

0: अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said collective participation has always been a source of strength in India's cultural ethos. Mr. Modi made the remarks while interacting with participants of the Viksit Vibrant Village Program 2026 through video conferencing today. More than 400 young participants from all states and union territories shared their experiences with the Prime Minister. During the interaction, Mr. Modi highlighted the community participation, national integration and awareness about the strategic importance of border villages.
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करेंगे।
1: Prime Minister Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today."
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. The Prime Minister also said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago. Union Minister Prahlad Joshi today assumed the charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, to New and Renewable Energy. Soon after taking charge, he chaired a review meeting of the Education Ministry to assess the implementation of various schemes and key initiatives. Minister of State for Education Jayant Chaudhary and several senior ministry officials attended the meeting. The Indian Embassy in Ukraine today said that it is closely monitoring the situation following the incident involving the cargo vessel MV Aegean Ragnar, which was struck at the port of Odisha yesterday. The embassy said that 4 Indian nationals were on board the vessel. It added that 2 of them have been confirmed safe, while information about the other 2 is still awaited. The embassy further said that search and rescue operations are underway and that it is in constant touch with the concerned authorities. At the ongoing Commonwealth Games, India's Rishikant Singh, Chambang,

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल शर्मा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे करगिल विजय दिवस की, जो केवल एक ऐतिहासिक सैन्य विजय का स्मरण नहीं बल्कि भारत के अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और अटूट राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। आज देश 27वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये अवसर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने वर्ष 1999 में दुर्गम हिमालयी चोटियों पर असाधारण साहस का परिचय देते हुए देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की। लेकिन श्रोताओं, करगिल विजय दिवस केवल अतीत की गौरव गाथा को याद करने का दिन नहीं है। ये हमें ये भी बताता है कि युद्ध के अनुभवों से सीख लेकर भारत ने अपनी रक्षा व्यवस्था, सैन्य रणनीति, आधुनिक तकनीक, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा के पूरे ढांचे को किस प्रकार मजबूत किया है। आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि करगिल युद्ध क्यों ऐतिहासिक था, ऑपरेशन विजय कैसे सफल हुआ, इस युद्ध से भारत ने क्या सीख ली, पिछले वर्षों में रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से बड़े सुधार हुए हैं और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति की क्या भूमिका है। श्रोताओं, साल 1999, करगिल की बर्फ से ढकी दुर्गम चोटियां, ऑक्सीजन की कमी, सीधी खड़ी चट्टाने और सामने दुश्मन की मजबूत चौकियां, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। मई 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर करगिल क्षेत्र की कई सामरिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन विजय के माध्यम से दिया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के समन्वित अभियान ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और 26 जुलाई 1999 को भारतीय तिरंगा फिर से सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर शान से लहराया गया। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुँचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुँचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: करगिल युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, इसने पूरे देश को एकजुट किया और ये संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर चुनौती का दृढ़ता से सामना करेगा।

करगिल युद्ध भारत के सैन्य इतिहास के सबसे गौरवशाली अध्यायों में गिना जाता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना ने व्यापक निगरानी और टोही अभियान चलाया। जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के वेश में भारतीय क्षेत्र की सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया कि भारतीय सेना अपने

0: सफेद सागर शुरू किया, जबकि भारतीय नौसेना ने भी समुद्री मोर्चे पर अपनी रणनीतिक तैनाती मजबूत की। भारतीय सैनिकों ने लगातार गोलीबारी, जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच चट्टानों पर चढ़कर दुश्मन से मुकाबला किया। टोलोलिंग की लड़ाई भारतीय सेना की पहली बड़ी सफलता बनी। इसके बाद 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर दोबारा तिरंगा फहराया गया, जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। 0.4875 बटालिक, मुश्कोह घाटी और ककसर जैसे क्षेत्रों में भी भारतीय सैनिकों ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। करीब 2 महीने से अधिक चले अभियान के बाद भारत ने अपनी सभी चौकियां पुनः प्राप्त कर ली। कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विजयंत थापर सहित अनेक वीर सैनिक आज भी राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।
1: श्रोताओं, करगिल युद्ध ने भारत को केवल विजय ही नहीं दिलाई, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण सीख भी दी। युद्ध के बाद रक्षा सुधारों, सैन्य समन्वय, आधुनिक तकनीकों और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर विशेष बल दिया गया।
2: कारगिल युद्ध के बाद भारत ने अपनी रक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए। उच्च रक्षा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया और सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना की गई, जिससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हुआ। रक्षा बजट में लगातार वृद्धि की गई। वर्ष 2013-14 में जहां रक्षा बजट लगभग 2,53,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2026-27 में यह बढ़कर 7,85,000 करोड़ रुपए का हो गया है। रक्षा उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि रक्षा निर्यात बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आज भारतीय रक्षा उपकरणों का निर्यात 80 से अधिक देशों को किया जा रहा है। स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, रक्षा औद्योगिक गलियारे और निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसी अनेक पहलें शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे रक्षा विनिर्माण के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं। सैन्य आधुनिकीकरण के तहत अर्जुन MK-1A टैंक, INS विक्रांत, राफेल लड़ाकू विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक ड्रोन प्रणाली और नई पीढ़ी के युद्धपोत भारतीय सेनाओं की शक्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, हाइपरसोनिक तकनीक, लंबी दूरी की मिसाइलें और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जैसे क्षेत्रों में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: श्रोताओं, करगिल की विरासत केवल सैन्य सुधारों तक सीमित नहीं है, ये नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा, अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा भी देती है। इसी भावना को जीवंत रखने के लिए इस वर्ष भी देश भर में अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश में शौर्य और बलिदान को समर्पित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से शौर्य विजय यात्रा को रवाना किया। लगभग 1900 किलोमीटर लंबी ये यात्रा द्रास में करगिल युद्ध स्मारक तक पहुँचेगी। भारतीय सेना की डेयर डेविल्स टीम ने व्हील्स ऑन वेलोर संचार शक्ति अभियान के माध्यम से अटल सुरंग में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर सैनिकों के साहस और अनुशासन का प्रदर्शन किया। द्रास में टाइगर हिल अभियान आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं और ट्रेकिंग गाइडों ने भाग लेकर सैन्य पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों ने करगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर अपने साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा स्मृति ट्रैक, सैन्य उपकरण प्रदर्शनी और मोटरसाइकिल अभियानों के माध्यम से नई पीढ़ी को करगिल के इतिहास और सैनिकों के बलिदान से परिचित कराया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम केवल इतिहास को याद करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समाज की भागीदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं।
1: श्रोताओं, करगिल विजय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसके हथियार नहीं होते, बल्कि उसके सैनिकों का साहस, नागरिकों का विश्वास और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण होता है। आज भारत आधुनिक सैन्य तकनीक, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन

बेहतर सैन्य समन्वय और अत्याधुनिक सुरक्षा ढांचे के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से कहीं अधिक सक्षम बन चुका है। करगिल के वीर सैनिकों का बलिदान हमें निरंतर ये प्रेरणा देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अक्षत ममगाई। नमस्कार।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। आपका दोस्त है आरजे अंकित और मैं हूं यहां पर कार्यक्रम लेके चाय और क्लासिक्स रहने वाला हूं 6:30 तक आपके साथ। और आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं FM गोल्ड पर यानी 100.1 FM गोल्ड पर। और आप हमारे ये कार्यक्रम अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको करना एक ऐप डाउनलोड। कौन सा ऐप? न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती का। और वहां पर आप सुन सकते हैं हमारे आकाशवाणी से जुड़े ढेर सारे कार्यक्रम। दोस्तों एक समय था जब शाम होते ही लोग अपने रेडियो सेट के पास बैठ जाते थे, पसंदीदा कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार होता था और जैसे ही पहली धुन बजती थी पूरा घर संगीत से भर जाता था। आज समय बदल गया है लेकिन रेडियो का अपनापन और इन गीतों की मिठास अब भी वैसी ही है। अब सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का एक आखिरी गीत जो मुस्कुराने की वजह बन जाता है दोस्तों। और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद, ये तो मेरा वादा है आप लोगों से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी संडे। और अगर आप मुझसे आज के दिन वापस से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे 7:02 पर 107 FM रेनबो पर। तो चलिए मिलता हूँ जल्द आप लोगों से फिर मैं।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, परचेज नियरली 15,000 करोड़ रुपीज इन जुलाई सो फार। In bullion market, gold and silver prices rebound after two straight weeks of decline. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में लिवाली का रुख कायम रखा। जुलाई में अब तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। सराफा बाजार में दो हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में तेजी और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाओं पर।
0: And listeners, before we go just any further in the program, may we remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जुलाई में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPIs ने लिवाली का रुख कायम रखा है। इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 14,946 करोड़ रुपए का निवेश किया। पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो FPIs ने भारतीय शेयरों में 3,049 करोड़ रुपए डाले हैं। भारतीय ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। जुलाई में उन्होंने FAR के जरिए 9,521 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 27,351 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आशुतोष, ये आंकड़े अब बहुत दिनों के बाद हमें जुलाई में अच्छे आंकड़े कुछ दिखाई दे रहे हैं। FPIs का रुख, उत्साह, दिलचस्पी सब बनी हुई है अभी। लेकिन अभी हमारे बाजार में जो पैसा आ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ से साउथ कोरिया के

0: मार्केट से या जहाँ पर भी एआई वाला और चिप वाले मार्केट थे वहाँ से पैसे निकले हैं और हमारे बाज़ार में आ रहे हैं, तो क्या ये कुछ टेम्पररी फेज़ है मार्केट की उथल पुथल का या शिफ्ट होने का, या हम माने कि अभी कुछ बड़ा बदला है, इक्वेशंस बदल गए हैं?
1: देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट का जो एक मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड है, जो इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स हैं, वो बरकरार थे, बरकरार हैं और आशा है कि वो बरकरार रहेंगे। और इसीलिए जो एक सेक्युलर तरीके से देखा गया है कि फॉरेन कैपिटल का इंडिया में इन्वेस्ट होना, उसका निवेशित होना, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हुआ या इस ट्रेंड में कोई रोक लगी है। हाँ, बीच में जो वैश्विक रूप में जो परिस्थितियाँ बनती हैं उनकी वजह से जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो ज़रूर मार्केट को उनको झेलना पड़ता है। अभी हमने देखा पीछे, जैसे मिडिल ईस्ट में जो ट्रेंड रहा उसको लेकर जो एक रिस्क एवर्जन ग्लोबल मार्केट में आता है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आया। हालांकि इंडिया का इस पर्टिकुलर वॉर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट तो ऐसी घटनाओं का ग्लोबल होता ही है। AI का एक ट्रेंड है, बीच में देखा गया कि जो ये चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ट्रेंड्स काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी इनके ऊपर फोकस रहा, लेकिन वैल्यूएशंस की फिर बात की जाने लगी, इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करी जाने लगी। तो ये शॉर्ट टर्म में ये सब नॉइस जो है इम्पैक्ट करती है मार्केट को और करती रहेगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म अगर आप सिग्नल देखेंगे उसमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो हमने देखा है कि फॉरेन कैपिटल वापस इंडियन मार्केट अट्रैक्ट करने में सक्षम है।
2: Okay, taking the discussion further from where you left, saying that you know there is still interest in the Indian market. So, from the retail investors' point of view, Ashutosh, how do you see this in building confidence in the market sentiment?
1: See, as far as the global is concerned, of course, when the foreign capital comes to India, it gives a fillip to the Indian markets, and when the Indian markets recover, they get on a momentum. So that brings cheer among the domestic investors as well.
2: Correct.
1: Time and again we've been advising that domestic investors, retail investors should not be overly reading into the short-term trends of FII money or what, you know, these investors are doing. Focus far more on your circumstances. What is your investing need that you are investing for? How much you can save and invest? And what is in the long-term scheme of things that you are wanting to achieve? If you have the long time horizon, equity is still the most promising and the most wealth generating asset class with the most wealth generating potential. And that remains a secular trend.
2: We'll come back to you with this discussion. Meanwhile, let's connect with our first caller from Delhi, Sunil Gupta. Welcome to the show. Please ask your question.
3: Namaskar, Mahesh Gupta ji.
2: Ji.
3: सर, मेरे एक क्वेश्चन दो थे। एक तो ये था कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का कोई एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसमें कि एक ही जगह से सब जगह इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऑथराइज कोई एक साथ, और लेकिन इनिशियली 32 ईयर्स एज वाले के लिए कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस किस सेगमेंट में करनी चाहिए?
1: जी, तो पहला सवाल आपका, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहीं सेंट्रल जगह से हो सकती है? देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जिनके जरिए आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक और प्लेटफॉर्म है MF सेंट्रल के नाम से, जो कि दो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं, के फिनटेक और कैम्स, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। आप MF सेंट्रल पे भी अपना लॉग इन कर डायरेक्ट प्लान्स में म्यूचुअल फंड्स के सहजता के साथ निवेश कर सकते हैं। तो आप MF सेंट्रल एक बार ट्राई करिए, शायद आपको वो कन्वीनियंट लगेगा। आप उस पर फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी, नॉमिनी चेंज करना, बैंक अकाउंट अपडेट करना, इस टाइप की ट्रांजैक्शंस भी आप सहजता के साथ MF सेंट्रल पोर्टल पे कर सकते हैं, तो आप उसको देखिए। दूसरा आपका सवाल, 32 साल आपने उम्र बताई, लॉन्ग टर्म अगर निवेश करना चाहते हैं, शुरुआती निवेशक हैं आप, और अगर आपको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, आप फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक या दो अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत करें। ये फंड्स आपका करीब 70-75% पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं, बचा हुआ 20-25% पैसा डेट मार्केट्स में निवेश करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ जनरेशन का, इक्विटी मार्केट्स के की बढ़त का लाभ आपको प्राप्त कराने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्योंकि 20-25% पैसा डेट में होता है, तो जब भी मार्केट गिरती है ये फंड्स थोड़ा कम गिरते हैं, और उस वजह

0: जिससे एक नए इन्वेस्टर को पैनिक ना हो, वो बहुत जल्दी निराश हताश ना हो जाएं, तो वैसा थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस देने में रिलेटिव व्हेन द मार्केट्स फॉल ये फंड्स सक्षम है। तो अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में अपना SIP शुरू करें, भले ही थोड़े छोटे अमाउंट से शुरू करें, इसको साल 6 महीना एक्सपीरियंस करें, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके बाद अपनी निवेश की मात्रा बढ़ाएं।
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी,
2: मैंने अपना स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाया था और मैं गोल्ड ETF परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गोल्ड ETF के नाम से वहाँ गोल्ड ETF डायरेक्ट के नाम से नजर नहीं आ रहा है, गोल्ड फंड के नाम से नजर आ रहा है, तो क्या ये गोल्ड ETF और गोल्ड फंड एक ही चीज है और दोनों के एक्सपेंस रेशियो में क्या कोई फर्क है? धन्यवाद।
0: जी, गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स का मकसद एक ही होता है, लेकिन ये दो अलग प्रोडक्ट्स हैं। सो मकसद एक ही है कि ये आपका पैसा गोल्ड में निवेश करते हैं और गोल्ड के दाम जिस तरह उतार चढ़ाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उनके रिटर्न मिलते हैं। लेकिन गोल्ड ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, आप गोल्ड ETFs की जो यूनिट्स हैं आप स्टॉक एक्सचेंज पे किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अल्टीमेट आपको बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको गोल्ड के रिटर्न्स का ही मिलेगा, लेकिन इसकी यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, एक्सपेंस रेशो कम होती है इनकी काफ़ी, और इनको आप ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं। वहीं गोल्ड फंड जो है वो जैसे आपके बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करते हैं। टिपिकली ये होता है कि किसी भी AMC का, किसी भी म्यूचुअल फंड का जो गोल्ड फंड होता है वो आपका पैसा इंटर्न गोल्ड ETF में निवेश करता है और गोल्ड ETF के माध्यम से वो पैसा आगे गोल्ड में जाता है। तो आप गोल्ड फंड को एक पास थ्रू व्हीकल मानिए, आपका पैसा गोल्ड फंड में जाएगा, गोल्ड फंड से गोल्ड ETF में जाएगा और वहां से गोल्ड में निवेश होगा, तो एक लेयर ऐड हो जाती है। जिन इन्वेस्टर्स को स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोलना, वो कन्वीनियंस चाहते हैं विदाउट स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट निवेश करने के लिए, तो गोल्ड ETF गोल्ड फंड्स उनके लिए अच्छा विकल्प है। थोड़ी सी एक्सपेंस रेशो इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं समझता दोनों में है। आप वो चुनाव करें उसका जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपको आप नॉर्मली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास स्टॉक ब्रोकिंग एक डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, तो आप गोल्ड ETF की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो सिर्फ एक गोल्ड फंड में थोड़ा सा अपना पैसा लगाने के लिए आप एक डीमैट और स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट मेंटेन करें, मुझे लगता है कि वो थोड़ा इनकन्वीनियंस है, कंबरसम है, तो आप गोल्ड फंड की तरफ जा सकते हैं।
3: ऑलराइट, लेट्स नाउ आस्क विशाल फ्रॉम दिल्ली, व्हाट्स हिज क्वेश्चन? विशाल जी, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मार्केट मंत्रा, जैसे मैं 35 ईयर मेरी साल है तो मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे को कौन से म्यूचुअल फंड में, मेरे को हाई रिस्क चाहिए और हाई रिटर्न भी चाहिए।
0: जी, आप 30 साल के हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न आपने बोला। देखिए, आमतौर पर मेरी सलाह यही होती है कि अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जैसा मैं अभी कह रहा था, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मुझे काफ़ी बेहतर लगते हैं एक शुरुआती निवेशक के लिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न के लिए तैयार हैं, अगर मार्केट डीप करेक्शन होता है 25-30% की, अगर अचानक मार्केट में गिरावट आती है उससे आप निराश हताश नहीं होंगे, तो आप कोई भी एक अच्छे मल्टी कैप फंड का चुनाव करिए। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जो करीब आपका कम से कम 25-25% आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगता है और बाकी 25% फंड मैनेजर की के पास लीवे होता है कि वो किस मार्केट सेगमेंट में कहाँ निवेश करना चाहते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स ऐसे हैं कि एक ही फंड में आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, कम से कम 50%, क्योंकि आपका पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहता है, तो एक रीजनेबली एग्रेसिव आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने में, अच्छे फंड्स अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम रहते हैं। तो आप किसी एक या दो मल्टी कैप फंड्स का चुनाव कर उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हमेशा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, एक साथ अगर आपके पास एक लमसम धनराशि है उसको भी आप ज़रूर कम से कम 8-10 महीनों में ज़रूर स्प्रेड कर ही लगाएं।
1: जी, अगले कॉलर हैं कोलकाता से विश्वज्योति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
5: गुड इवनिंग फॉर ऑल।
3: गुड इवनिंग।
5: मैं ओल्ड इन्वेस्टर हूँ, मेन बात है क्या, देखिए 2 साल से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप लोग बोल रहे हैं AI, आप बोल रहे हैं टैरिफ, आप बोल रहे हैं ट्रंप, आप बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट, लेकिन करेक्शन जो हो रहा है

0: What's the use of? I can't understand actually. Correction मतलब क्या है? Bank का interest का level के नीचे जाएगी? MF mutual fund किस लिए हम लोग करेंगे?
1: जी देखिए, म्यूचुअल फंड की जहाँ तक बात है, रिटर्न आपके हमेशा ही मार्केट लिंक रहते हैं, तो बिल्कुल अगर मार्केट में गिरावट का माहौल है, अगर मार्केट्स इन्वेस्टमेंट के अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट के नीचे भी इनका रिटर्न जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, आपकी कैपिटल में आपको लॉस भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स एक मार्केट लिंक निवेश हैं, इनमें मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिस्क बरकरार रहता है, और इसीलिए इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजी बोला जाता है। अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने बताया कि आप एक ओल्ड इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या बैंक FD इस टाइप के विकल्प हैं, लेकिन इनके रिटर्न हमेशा ही मॉडरेट रहते हैं, ये आपको इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाते। अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न इन सभी विकल्पों का देखते हैं, तो आपको एक काफ़ी मॉडरेट रिटर्न मिलता है। तो अगर आप मॉडरेट रिटर्न लेकिन श्योरिटी के साथ से संतुष्ट हैं, तो यही सारे आपके पास विकल्प हैं। लेकिन अगर आप हाई रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं, तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल जो सही रास्ता है, वो एक मिडल पाथ है, कि आप अपना काफ़ी पैसा एश्योर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में रखें, लेकिन थोड़ा पैसा हाई रिस्क स्ट्रेटजीज में भी डालिए, क्योंकि ओल्ड एज में भी रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। इन्फ्लेशन के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे ओल्ड एज में, आज आपका जितने पैसे से आपका घर चल जाता है, 5 साल 10 साल में वो पैसे पर्याप्त नहीं रहेंगे, तो उसके लिए आपकी कैपिटल का ग्रो करना भी ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल एक ओल्ड इन्वेस्टर को भी थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है शायद, और उसके लिए म्यूचुअल फंड्स एक सही विकल्प है।
2: Listeners, you are tuned to your very own favorite program, Market Mantra. And today being Sunday, we are entertaining calls on mutual fund related queries. We are fortunate to have with us in the studios mutual fund expert Ashutosh Gupta. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106.
3: और अब देखते हैं कि सराफा बाजार का क्या हाल रहा है। दो हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में पिछले हफ्ते थोड़ी तेजी देखी गई। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.56% की बढ़त हुई और ये 1,43,916 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 1.55% बढ़कर 2,22,138 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.3% की बढ़त हुई और ये $4,070.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3.8% बढ़कर $58.49 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुई। आशुतोष, सोने और चांदी का जिक्र जब भी आता है और म्यूचुअल फंड्स का जब हमारा संडे का स्पेशल शो रहता है, अक्सर बात होती है, लोग पूछते हैं कि जब बीच में जब सोने और चांदी में काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही थी, तब लोग पूछते हैं कि क्या करें, हम सोने और चांदी की ओर जाएं या म्यूचुअल फंड्स की ओर जाएं। एक सही पोर्टफोलियो बनाने के, एक सही निवेश बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत और हर चीज़ का लाभ उठाने के लिए किस चीज़ का कितना प्रतिशत हमें रखना चाहिए?
1: जी, तो पहले तो ये जो रिबाउंड देखा गया है सोने और चांदी के दाम में, ये एक मेरा ख्याल राहत के रूप में आया है। बहुत सारे निवेशक जो पिछले 2-3 साल में जो सोने और चांदी में तेजी देखी गई है, उसको देखकर जो बहुत सारे निवेशक इसमें एंटर हुए थे और फिर इस साल शुरुआत से उनको थोड़ी निराशा हाथ लगी थी, तो मेरा ख्याल ये जो थोड़ा रिबाउंड है, ये उनके लिए थोड़ा राहतदायक ज़रूर होगा। और इसी से इन्वेस्टर्स में, यही इन्वेस्टर्स के लिए मेन सीख छुपी है कि आप किसी भी हॉट ट्रेंड को, किसी भी हॉट एसेट क्लास को जो पिछले 1 साल में जिसने ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिया है, अगर आप सिर्फ मोमेंटम चेस कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिंग में, पिछले 1 साल में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास है अगर उसका पीछा कर रहे हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि आपके हाथ निराशा लगेगी। आप जब वो बहुत ऊपर उठ चुकी होगी एसेट क्लास अब तब उसमें निवेश करेंगे और उसके बाद उसके रिटर्न्स मॉडरेट हो जाएंगे या गिर जाएंगे और वो आपके लिए निराशाजनक होगा। तो ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन से अपने लिए एक एसेट एलोकेशन बनाएं और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करें, चाहे वो एसेट क्लास उतार चढ़ाव के

0: माहौल के बावजूद आप एक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें। गोल्ड की जहां तक बात है, इसका मुख्य रूप से रोल जो होता है पोर्टफोलियो में, वो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए होता है। ये एक काउंटर वेट है इक्विटी का। जब जब इक्विटी मार्केट में गिरावट आई है, देखा गया है कि गोल्ड उस वक्त थोड़ी स्थिरता प्रदान करता है। जब जब इकोनॉमी में क्राइसिस का माहौल होता है, गोल्ड एज एसेट क्लास, क्योंकि उसको एक सेफ हेवन की तरह देखा गया है, तो उसके रिटर्न्स उन दिनों अच्छे चलते हैं। तो इस एट्रीब्यूट के लिए आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 से 15% आप गोल्ड को रखते हैं, तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जरूरी है कि आप इस पे बरकरार रहें। आप तब ना इन्वेस्ट करें जब वो गोल्ड बढ़ चला है, और उसके बाद आप निवेश करेंगे तो आपके हाथ निराशा लगेगी। तो आप एक डिसिप्लिन के साथ 10-15% की एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में कार्व आउट करें और उस पे बरकरार रहें।
1: और गोल्ड लेने के लिए फिजिकल गोल्ड ना लें, आप ETF ले सकते हैं तो लें, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड में भी। आपने जैसे अभी एक सवाल आया था हमारे पास कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, अगर आपको सहजता के साथ इन्वेस्ट करना है, गोल्ड का फिजिकल, अगर आपको निवेश का ही आपका पर्पस है, क्योंकि गोल्ड का मुख्य रूप से हिंदुस्तान में पर्पस होता है कंजम्पशन, उसको ज्वेलरी के रूप में एक कंजम्पशन एसेट कितने देखा जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप उसको एज अ फाइनेंशियल एसेट कितने यूज करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स जो आज काफी सहजता के साथ अवेलेबल है, वो अमंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए।
2: वेलकम बैक टू यू Ashutosh on that. Meanwhile, let's ask Subhash from Faridabad what his query is. Subhash ji, सवाल पूछे।
3: हाँ नमस्कार सर।
2: जी
3: सर, मैं इसमें मेरा ही असेट का लार्ज कैप फंड में 5-6 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से प्रॉपरली, जैसे पहले इसका परफॉर्मेंस था, मेरे जो रिटर्न मिल रहे थे, अभी तो बहुत कम है इसके रिटर्न। अभी तो इस साल तो नेगेटिव में ही रहा, तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसमें? मेरा ये असेट लार्ज कैप फंड है।
0: जी, मेरा ख्याल आप मेरा एसेट लार्ज कैप में बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका हिस्टोरिक रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है, और एक इन्वेस्टर्स की जो इसके साथ एक्सपेक्टेशन साल दर साल सेट हो गई थी, तो हाल फिलहाल में उन एक्सपेक्टेशंस पे शायद ये उतना खरा नहीं उतरा है। लेकिन अपने आप में ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस ये कोई बहुत बुरा फंड नहीं है या बहुत निराशाजनक नहीं हुआ है। हाँ, जिस टाइप की एक्सपेक्टेशंस जो उसने अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, उस पे खरे उतर पाना, या लोगों को जिस टाइप की इससे आशाएं साल दर साल रहती हैं, तो कहीं पे निवेशकों को अपनी एक्सपेक्टेशंस भी मॉडरेट करनी पड़ेंगी। एक बढ़ता हुआ फंड है, मेरा ख्याल आज की डेट में 40,000 करोड़ के करीब इसका AUM है। तो देखिए, जो एक एक टाइम पर जिस टाइप से ये रिटर्न दे पाता था या जिस तरीके से ये मैनेज होता था, बढ़ते AUM के साथ उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन अभी भी फंड मैनेजमेंट टीम काफ़ी सक्षम है, अच्छा फंड है। इस साल अगर देखें नेगेटिव रिटर्न, तो देखिए इसलिए कि मार्केट के ही नेगेटिव रिटर्न है, तो नेगेटिव रिटर्न सारे ही लार्ज कैप फंड के हैं, लेकिन फिर भी अबव एवरेज परफॉर्मर है अपनी कैटेगरी में इस साल। तो मेरा ख्याल आप फिलहाल तो इस फंड में बिल्कुल बने रह सकते हैं।
1: जी, और सरबजीत, हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अभी इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा है, हमने इतने समय से निवेश किया हुआ था, अब क्या करें हम? तो आशुतोष, अक्सर ये सवाल उठता है, और एक बुनियादी निवेशक के तरीके से अगर हम देखें कि अगर हमने, चलिए 10,000 रुपये, 5,000 रुपया या 1,00,000 रुपये कहीं फंड्स में लगाए हुए हैं, 1-2-3 फंड्स में डाले हुए हैं, तो हमें उसको कितने समय पर रिव्यू करना चाहिए? क्योंकि फंड्स का तो प्रदर्शन बदलता रहता है समय के साथ, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है, तो हमें कब रिव्यू करना चाहिए और कब कितनी गिरावट आने पर उसके प्रदर्शन में हमें बदल देना चाहिए, अपने पैसे हटा लेने चाहिए?
0: जी, तो देखिए ये काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर्स काफ़ी शॉर्ट टर्म के परफॉर्मेंस को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट होती है। जहाँ तक पोर्टफोलियो रिव्यू की बात है, मेरा ख्याल अगर आप साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, आप अपने SIPs बनाइए, उनको चलने दीजिए, साल में एक बार आप रिव्यू करिए। 2-3 डायमेंशन है उस रिव्यू की। पहली तो आप देखिए कि एक साल बाद क्या आप अपना SIP की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो नौकरीशुदा लोग हैं, साल में एक बार आपकी तरक्की होती है, आपकी आपकी इनकम बढ़ती है, कोशिश करिए कि आप अपनी इनकम के साथ आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ा पाएं, तो जो आपकी SIP के अमाउंट्स हैं उनको बढ़ा पाएं। तो साल में एक बार रिव्यू करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल परिस्थिति देखिए कि आप अपनी इनकम का कितना प्रतिशत पैसा निवेश कर रहे हैं, और क्या वो 2-3 साल से अगर आपने नहीं बढ़ाया है तो बिल्कुल उसको इस साल कोशिश करिए कि आप बढ़ाएं। तो ये तो है पहला पॉइंट।

0: दूसरा आप अपनी एसेट एलोकेशन देखिए कि अगर आप मानिए 75% इक्विटी 25% डेट की एसेट एलोकेशन के साथ चले थे और मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से एसेट एलोकेशन हिल गई है, मानिए इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और जो 75% थी वो अब 85% हो चली है, तो एक साल बाद रिव्यू करके थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए जिससे जो आप रिस्क रिटर्न इक्वेशन बनाए रखना चाहते थे वो बनी रहे। और तीसरा आप नज़रिया यही है कि क्या कुछ फंड्स ऐसे हो गए हैं कि जिनमें बदलाव की ज़रूरत है, वो निराशाजनक हो गए हैं और पोर्टफोलियो में कुछ उलट फेर की ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ पिछले एक साल या पिछले 6 महीने के रिटर्न के बेसिस पे डिसाइड मत करिए, कम से कम 3-4 साल का होराइजन किसी भी फंड के लिए रखिए। बेहतरीन से बेहतरीन फंड ऑल्सो गोज थ्रू अ रफ फेज, तो किसी भी फंड का कुछ समय के लिए अच्छे रिटर्न ना देना ये बड़ा ही स्वाभाविक है, तो छोटे छोटे टाइम पीरियड पे साल 1.5 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। और ज़रूरी आप उस अगर आपके फंड ने अंडर परफॉर्म किया भी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, अगर वो स्मॉल कैप फंड है तो शायद स्मॉल कैप बाजार ही निराशाजनक रहा है, तो आप ये भी देखिए कि जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, और इन सारे मुद्दों पर आप विचार कर फिर अपना डिसीजन।
1: क्योंकि अगर पूरा बाजार ही गिरा है, अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो जो उन पर निर्भर है, अगर उनमें ही गिरावट आई है और अगर फंड भी लगभग उतना ही गिरा है तब तो उसको वाजिब मान सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब बात है और इसी तरीके से देखना चाहिए। और अगर किसी फंड ने उसके आउट ऑफ द लाइन भी अंडर परफॉर्म किया तो भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। हर बार जब आप फंड बेचने का डिसीजन लेते हैं अब आप टैक्स भरते हैं, तो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप फंड्स चेंज करते रहेंगे तो मेरा ख्याल आप टैक्स तो भरपूर भरेंगे, शायद उसका लाभ उतना नहीं उठा पाएंगे।
2: आशुतोष, वी हैव अनदर कॉलर फ्रॉम दिल्ली। केशव जी सवाल पूछे।
3: हाँ जी नमस्कार, आकाशवाणी मार्केट मित्र, मैं आकाशवाणी को ये पूछना चाहूंगा, सबसे तो सवाल मेरा कि जो आप लोग आखिरी में एक बातचीत बताते हैं कि पंजीकृत ही से आप हमारा इनसे कोई विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ये जो इतने बड़े अच्छे एक्सपर्ट आते हैं आपके मंच पर तो ये एक्सपर्ट ही तो हैं, पंजीकृत ही तो होंगे, आप इनको जो बुलाते हैं तो आप कृपा करके ये कंफ्यूजन क्यों हम लोगों को समझ नहीं आता, इनके पर हम बात का विश्वास करें क्या ना करें? धन्यवाद।
1: देखिए, मार्केट मंत्र आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, उसे मानना या नहीं मानना, और चूंकि पैसा आपका है तो फैसला आपका है, इसलिए वो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। जी सरबजीत, अगली कहानी पे चलें।
2: Yes, let's take a peep into how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter of corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators including first quarter of corporate earnings, foreign institutional investors and rupee and technical levels. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the Brent crude, which has risen above $100 per barrel amid West Asia tensions and soon to be held US Federal Reserve meeting. Ashutosh, we'll discuss this, but first let's connect with our caller. Manoj ji, sawal poochhe.
1: Manoj ji, aap sun pa rahe
4: hain? Haan ji, namaskar.
1: Ji, namaskar.
4: Ji, main ye, maine kuch mutual fund apne sell kare the is saal April mein.
1: Ji. Hello. Ji, ji, jaldi se pooch rahe hain, sab waqt bahut kam hai.
4: Ji, haan, ji, haan. तो मैंने जैसे 2,25,000 जैसे उसकी कॉस्ट थी, तो मैंने 2,00,000 की जो है वो सेल करी थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने 2,00,000 की सेल करी है और उसके ऊपर कुछ एप्रिसिएशन आ रहा था तो वो क्या जो कैपिटल गेन होगा वो प्रोपोर्शनेटली होगा या कैसे होगा वो?
0: जी नहीं, कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है जो आपकी सबसे पुरानी यूनिट्स बिकी हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल हमेशा यूज़ होता है, तो आपने 2,25,000 के निवेश में जो 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, जो सबसे पुरानी यूनिट्स हैं उन पर जितना गेन होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
1: जी आशुतोष, आज वक्त इतना ही है, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद आपका।
2: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, परचेज nearly 15,000 crore rupees in July so far. In bullion market, gold and silver prices rebound after 2 straight weeks of decline, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments

0: for queues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बडिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताज़ा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said collective participation has always been a source of strength in India's cultural ethos. Mr. Modi made the remarks while interacting with participants of the Viksit Vibrant Village Programme 2026 through video conferencing today. More than 400 young participants from all states and union territories shared experiences with the Prime Minister. During the interaction, Mr. Modi highlighted that communities in the country have long worked together while singing songs, stressing that this practice strengthened unity and made collective efforts more joyful and stress-free.
1: हमारे देश में सदियों से एक अच्छी परंपरा रही सामूहिकता की और सामूहिकता के साथ गीत गाते गाते कामों को करना और उस काम के साथ गीत भी बना देना जो इस प्रकार का काम हो उसी का गीत बना देना ये हमारे देश की बड़ी विशेषता रही है उस सामूहिकता से शक्ति आती थी और गीत गाने से तनाव मुक्त काम होता रहता था।
2: Highlighting the role of solo travel, the Prime Minister said many participants began their journeys as individuals but returned as one family through the My Bharat initiative. He described this transformation as one of the program's key achievements, turning personal experiences into a shared sense of belonging and national unity. Prime Minister Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said the 26th of July is a date that does not require calendar to be remembered as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Divas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at the cenotaph and paid tributes to the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation Vijay. Addressing the gathering, Rajnath Singh said that Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valor of Indian soldiers. He said the bravery displayed by the armed forces during the conflict created a legacy that continues to be a source of pride for every Indian. Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Soon after taking charge, he chaired a review meeting of the Education Ministry to assess the implementation of various schemes and key initiatives. Later, speaking to the media, Mr. Joshi said he is currently holding review meetings to gain a comprehensive understanding of the ministry's functioning, policies and ongoing initiatives. In Gujarat, the intensity of the rain reduced today after 4 days of heavy showers. Light to moderate rainfall were reported in 76 talukas, with the state receiving 53% of its seasonal average rainfall so far. In the wake of heavy rainfall in recent days, more than 7,900 people have been rescued and over 52,000 evacuated from affected regions. Restoration efforts are underway to bring life back to normal in the affected districts. Union Home Minister Amit Shah today spoke again with Chief Minister Bhupendra Patel and reviewed the situation in the state. In cricket, India have set a target of 193 runs against host

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह 4 बजे हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
3: हमारे सीमावर्ती गांवों में

0: विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
2: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry.

0: শুনলেন আলেখ্য নবমেঘ। আমরা ফিরছি ঠিক ১১টা বেজে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মোহাম্মদ জুবের। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम

0: उसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
0: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री

0: अलग कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक में बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 2 अन्य लोग घायल हो गए। निफाड तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4वां राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
4: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया

শিপ্রা বসু। শিপ্রা বসুর কণ্ঠে শুনছেন আধুনিক গান।

এটা তিনবার, যাকে চক্রধার চক্রমুকুল বলি আমরা।